0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:08।
1: Bollywood.

0: क्या? ऐसे बात नहीं बनेगी यार, रवि किशन का गुची स्टेप करके दिखाओ तो आएंगे।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: रवि किशन वेंट वायरल फॉर दैट एक्सीडेंटल, मतलब गलती से कुछ साइडवेज उन्होंने वॉक किया, उसको निकालकर पीछे एक गाना चिपकाकर उसको डाल दिया सोशल मीडिया पे, इट वेंट टोटली वायरल। एंड द सॉन्ग जो पीछे लगाया था, दैट वाज अरूप खान्स गुची, दैट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग। एंड देन रवि किशन बिकेम एन ओवरनाइट इंटरनेट मीम, एंड अरूप खान ने सोचा कि यार इट्स टाइम फॉर अ रिसर्जेंस ऑफ द ट्रैक कॉलिंग रवि द ओजी, हु गेव द सॉन्ग अ फ्रेश वेव ऑफ पॉपुलैरिटी। ट्रेंड बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर की तरह फैला, यू नो, पीपल फ्रॉम फैफ टू प्लेसी से लेकर अनुपम खेर, बमन ईरानी, अली फजल, दिव्येंदु, सबने इसके ऊपर एक गुची स्टेप ट्राई किया एंड काफी सारे लोग फेल भी हुए, बिकॉज रवि किशन इज रवि किशन, फेम फॉलोज माय ब्रदर। बट गॉट अ मैसेज ऑल द वे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, थैंक यू वेरी मच टू सुजाता हु इज रिक्वेस्टेड फॉर The song that made the song that was made viral by Ravi Kishan Gucci, request किया सुजाता ने। एंड आप जानते हैं चाहे अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे कहीं पर भी है दुनिया के किसी भी कोने में, यू कैन लिसन टू अस लाइव big1062.com, दैट्स आर वेबसाइट big1062.com पर आप जाएं, लिसन लाइव बटन दबाएं एंड यू कैन लिसन लाइव टू अस।

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: मैं दीवानी कुछ न जाना, मस्त होके गावा, लाके बंदे
1: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
5: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
4: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
1: The Big Breakfast, brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Forget about the temperatures, more about the humidity these days. Yes, 9th of October, it's 7:29 on the clock and 56% humidity se aaj din ki shuruaat hui hai. 31 degrees Celsius right now, winds blowing at 14 kilometers per hour, highs of 36, lows of 30 degrees. The prediction is that in the days to come, there will be rainfall.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 311 के क्या हाल चाल हैं आज सुबह. हेलो गुड मॉर्निंग 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ दीज आर्टरीज यू विल फाइंड 5 से 6 मिनट की देर, नथिंग मेजर. एंड देन देयर इज बेरू स्ट्रीट, ट्रैफिक इज पिकिंग अप राइट आउटसाइड मदीना मॉल, नो सरप्राइजेस देयर. D89 पे हेडिंग वेस्ट गोइंग टुवर्ड्स देरा, कंजेशन ऑल्सो बिल्डिंग अप एट E11 ऑलरेडी, अ बिट ऑफ कंजेशन एट ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस पे वाला एरिया एंड बिजनेस पे मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें एज ऑलवेज यू विल फाइंड ट्रैफिक. Entire patch from Alkuz 4th to Alkuz Industrial 4th. आपको ट्रैफिक मिलेगा ऑन 44 अलखेल रोड. सो बी केयरफुल, यहाँ पर कुछ 4 से 5 मिनट की देर. फैलकन सिटी ऑफ वंडर्स हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स ग्लोबल विलेज वाला एरिया इज गेटिंग अ बिट कंजेस्टेड. 611 पर आज गोइंग टुवर्ड्स अरेबियन ब्रांचेस यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट की देर. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.

0: Have you noticed there are no bad ideas in the world anymore?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: फंडा क्या है ना कि देखो, अगर अच्छा आइडिया हुआ, राइट, सो देन यू कैन एक्चुअली टर्न इट इनटू अ वेरी अमेजिंग बिजनेस, मेक सम अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ मनी. अगर इट्स इन द अदर कैटेगरी, देन इट विल बिकम, यू नो, वायरल. एट द लीस्ट इट कैन बिकम लाइक अ मीम, राइट. आप कोशिश तो करो, देखो तो सही. तो ऐसे नहीं तो वैसे कान वैसे पकड़ के आप पैसे कमा सकते हो. ऐसा एक आइडिया मुझे आज सुबह मिला है. देयर समबडी, अब वो फंडा आपने सुना है ना कि जब सुना क्या, ये हम सब ने किया है कि जब मेहमान आ रहे होते हैं घर में तो सारा जो कचरा है वो कालीन के नीचे kind of sweep everything under the carpet wala cheez ka. What is the digital version of this? Somebody has actually created a kaleen keh lo, carpet keh lo, rug keh lo, isko aap download karo, apne desktop pe lagao. So your desktop has a very nice beautiful looking kashmiri carpet, theek hai, and usko aap idhar udhar hila sakte ho. Kafi detailing kafi achhi ki hai, right. And hamari ek aadat hoti hai na ki desktop pe kya kya पड़ा हुआ है, कितने फोल्डर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, हाउ मेनी स्क्रीनशॉट्स हैव यू काइंड ऑफ टेकन, एंड ऑल ऑफ देम बाय डिफॉल्ट गेट सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप. एट द एंड देयर इज सो मच ऑफ क्लटर. सो क्वाइट लिटरली यू कैन डाउनलोड दिस कारपेट एंड स्वीप ऑल योर क्लटर अंडर दिस ऑनलाइन कारपेट. या आई एम ऑल्सो स्क्रैचिंग माई हेड कि इसका प्रैक्टिकल क्या है. वो कालीन आपका अगर वो साफ करके दे दे, आपकी जो यूजलेस चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दे अपने आप, तब तो कोई बात है. लेकिन नहीं नहीं, इट इज़ जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर, यू नॉट गोना मेक एनी मनी आउट ऑफ इट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई मीन अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट. तो वायरल तो हो गया, मैंने कहा कान ऐसे पकड़ो. इट इज़ सक्सेसफुल, देर आर नो बैड आइडियाज़ इन दिस वर्ल्ड. सो आप कोशिश तो करो. अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत लगी, दैट इज़ टोटली नॉट ट्रू. एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट्स विद अ स्मॉल आइडिया, बट एज दैट बिग बिजनेस grows, it needs to grow too, right? So first you need a business license to get started, then office space to operate. As the business grows, you need a warehouse, and then when it's time to scale that industrial land, what if you could find all of that under one ecosystem? Now that's UAQ Free Trade Zone, the Umalquain Free Trade Zone. More than a business license, it's a complete ecosystem yahan milega aapko, designed to help businesses start, operate and scale in the UAE. Affordable business licensing solutions se lekar offices, warehouses se lekar industrial land, sab aapko milta hai. The UAQ Free Trade Zone supports your business as it grows with corporate tax benefits. One ecosystem, different stages of growth. UAQ Free Trade Zone, built for businesses that are ready to grow.
1: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
1: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
3: Holidaymarket.ae. Need to escape this weekend? I've got Fujairah staycations from just 500 dirhams. Rooms won't wait. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: things get viral on social media, मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन this chili thing is taking it a bit too far.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I mean, in case you haven't heard about this, मतलब मेरे कहने से उतना मजा नहीं आएगा, आपको जाकर देखना पड़ेगा. Chili meme. I mean, I'm not talking about the फल सब्जी, I'm talking about the country. Chile, however you kind of pronounce it, but it's that South American country, the west of the continent, जो कि उसकी कोई गलती नहीं है, बस यही है कि वो जरूरत से ज़्यादा पतला है. So people are just kind of setting off on Chile कि ये country कितनी पतली है यार, how thin is this country? And so क्या-क्या memes viral हो रहे हैं कि एक classroom है जो कि Chile का classroom कैसा दिखेगा? So बहुत ही पतला सा corridor type का जिसमें benches लगी हैं एक के पीछे एक. Then Chile में pizza slice कैसे मिलेंगे? तो बहुत ही पतला सा pencil type का pizza slice है. Then Chile में गाड़ियाँ कैसी होंगी? तो बहुत ही पतली सी, ज़रूरत से ज़्यादा पतली गाड़ी बनाकर उसको चिपका दी है सोशल मीडिया पर. फ़ोन कैसे होंगे Chile में? तो इस ज़रूरत से ज़्यादा लंबा फुट रूलर टाइप का एक फ़ोन है. आई मीन आई जस्ट डोंट गेट इट यार, कुछ भी चीज़ वायरल हो रही है. Just because Chile has an ucha lamba kad? Yeah, you could also say that Chile has an ucha lamba kad, lekin nahi. How can you body shame an entire country is my question on social media.
1: Big 106.2.

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: You know, what are the true sign of somebody who has business acumen versus somebody who's not very good at business is ki agar aapne pichle dino mein, if you've even the thought has occurred to you to buy a .si domain name, then bhai, business karna chahiye aapko.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: He's like, he behaves like a bad headmaster of a school, right? Ke matlab, anybody who's found using, as bolte the na mane principles ke, koi bhi, anybody who's found using AI instead of SI in the future will be considered an enemy. हाँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया. आज से हम लोग आर्टिफिशियल नहीं, सुपर इंटेलिजेंस के नाम से इसको पुकारेंगे. बोलो भाई, सुंदर भाई सही है ना? सुंदर कहते हैं. हाँ, बोलो भाई इलॉन भाई, आप क्या कहते हो? हाँ, इलॉन मस्क. हाँ हाँ हाँ, आज से हम लोग ना आर्टिफिशियल नहीं, सुपर इंटेलिजेंस के नाम से इसको जानेंगे. एंड नाउ ऑफकोर्स कोई भी काम वो हाफ हार्टेड तो करते नहीं. नाउ इज सेइंग एनिमी. आई विल से इफ यू से आर्टिफिशियल इंस्टेड ऑफ सुपर, यू विल बी द एनिमी. नाउ ओनली प्रॉब्लम इज दिस वेयर गेट्स रियली फनी, राइट? व्हाइट हाउस के खुद के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी वेबसाइट पे अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं. देन देयर इज अ होम पेज कॉल्ड ai.gov. वहां पर अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में बिग बोल्ड वहां पे चेंज हो गया डिस्प्ले में si.gov, लेकिन द वेबसाइट इज स्टिल ai.gov. हाँ, द फर्स्ट थॉट दैट अकर्ड टू मी वाज कि हम में से किसी देसी बंदे ने खरीद लिया होगा si.gov, लेकिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू बाय अ .gov डोमेन नेम. वरना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. Right, what are the experts saying about this? Super intelligence already carries a specific meaning in the field. And artificial intelligence is actually something different. So yeah, bahut zyada confusion hai. What's up, chodo? This is from Jewel Thief, The Heist Begins, Jadoo, right here on The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, टपको पहाड़, झटपटाहट, फटफड़ाहट, सुबुगाहट, बुलाहट, दूध दही से मिलाई। Big 101.

0: आई डोंट नो व्हाट यू थिंक बट मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग विद्युत जामवाल इनफ एज देसी.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड फिल्म्स इन जस्ट अबाउट अ वीक्स टाइम, एग्जैक्टली अ वीक्स टाइम, 16th ऑफ अक्टूबर को रिलीज होने वाली है स्ट्रीट फाइटर. विद्युत जामवाल इज प्लेइंग धालसिम इन इट एंड इट इज, आई मीन बाय द लुक्स ऑफ इट, इट्स अ मेजर रोल. इज अ पार्ट ऑफ ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज एज वेल. बट यू नो उसका एक रीजन क्या है कि थोड़ा सा डर लगता है विद्युत जामवाल को सपोर्ट करने, क्योंकि उनकी थोड़ी सी अलग टाइप की हरकतें हैं. बिकॉज अ कपल ऑफ डेज अगो एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कि वो एक प्रमोशनल इवेंट में स्ट्रीट फाइटर की स्टेज पे खड़े हैं एंड ही स्टैंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट तक वो स्टेज पे खड़े हैं लॉस्ट इन मेडिटेशन. नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ मेडिटेशन यू थिंक ऑफ आईज क्लोज्ड क्रॉस लेग्ड, राइट? नहीं, वो खड़े हुए हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं एंड टीयर्स आर रनिंग डाउन हिज आईज. एंड कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है ही काइंड ऑफ हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 15, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विदाउट इवन ब्लिंकिंग वंस. बट या देन ही सेड लेटर, जब उनसे पूछा गया कि कर क्या रहे थे यार आप स्टेज के ऊपर, कहा कि भाई तुम्हें लगता है और गलत लगता है, गलत फहमी है कि मेडिटेशन सिर्फ बंद आंखों से और आलती पालती मार के आप जमीन पर बैठ के, नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी कर सकते हो आप, किसी भी दशा में आप कर सकते हो, किसी भी दिशा में देखते हुए. सो या दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जब वो करते हैं ना तो हमें थोड़ा डर लगता है कि यार पता नहीं ये बंदा क्या करेगा इस फिल्म के अंदर. काम करते फिल्म को पहले देख लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट करेंगे. डीजे सुकेतु का दैट क्लासिक सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings, and a crispy Parmesan crust. Order now.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Holidaymarket.ae. A staycation from just 250 dirhams? Yes, really. I found the deal. You just need to grab it. Visit holidaymarket.ae or call 800 Alfred.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 9:10 on the clock on this Friday. Friday, of course, ek nazar hamari cinema halls pe hoti hai, OTTs pe hoti hai, kya release ho raha hai, kya nahi, what is the recommendation, what is the one thing that we should be spending our weekend watching. So if you need, you know, these recommendations, then don't forget to tune into The Big Binge, Saturday evening 7 to 9 and then Sunday 10 a.m. to 12 p.m. Is baar main kis show ke baare mein baat karun, OTT content ke baare mein baat karun, in case you have a recommendation, if there's some confusion in your mind, kisi ek show ko lekar OTT, then you can always send me a recommendation on our WhatsApp 054-309-1062. Lekin, of course, Friday, time pass wala din hota hai. It's a kind of day to appreciate Bollywood comedies as well. So, ek scene mein aapko sunane wala hun. And you have to recognize ki ye film ka naam kya hai. Okay, let's see. You gotta flex your Bollywood muscle a bit. Dekhte hain ki aap utne bade Bollywood comedy fan hai ki nahi. Jitna ki main hun. So, is scene ko suniye. Yeah. And pehchaniye ki film ka naam kya hai. Who is कौन सी फिल्म में this person is so obsessed with cleanliness?
2: ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ. हाँ, ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
3: Listen gentlemen,
2: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का.
3: I'm sorry.
2: अबे sorry क्या? इंडिया समझा? हाँ, गुना करो, sorry बोलो.
4: क्या हुआ बड़ी जी?
2: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थक गया. इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना.
1: एक कचरे के सीन से लेकर काफी बड़ा सा लफड़ा हो जाता है. तो अगर आपको पता है कि फिल्म का नाम क्या है, इफ यू नो द नेम ऑफ द फिल्म, गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. तो फिर आओ दोबारा कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. बिग 106.2.

0: देखो न्यूमेरोलॉजी का काम होता है किसी की किस्मत बनाना, किसी फिल्म की आधी किस्मत डुबाने के पीछे आई थिंक ये न्यूमेरोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल, इज माई ओपिनियन. बिकॉज अगर आपकी फिल्म का नाम वन है और अगर आपने स्पेलिंग रख ली VVAAN तो वो वन हो गया ना. कितनी भी न्यूमेरोलॉजी आप यूज कर लो, यू कांट चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इतनी डीप एनालिसिस किसी ने भी नहीं की होगी. अजहर भाई मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद. अजहर भाई गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
2: गुड मॉर्निंग सिद भाई, आई एम वेरी गुड. आप कैसे हैं?
0: काम पे पहुंच गए क्या?
2: बस जस्ट रीच्ड.
0: कैसा रहता है फ्राइडे को, मतलब मन करता है काम पे जाने का?
2: सर हमको तो हर दिन काम करना पड़ता है ऑब्वियसली बिकॉज वी आर इन रिटेल. So, our shops are every day open. So, हमें तो absolutely मन करता है because every day is a new challenge.
0: Thank you. Very good. हाँ, ये अच्छी Oscar acceptance speech के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. अजहर भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. चलो अब काम की बात करते हैं. आप बड़े बॉलीवुड के फैन मुझे लग रहे हो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अभी तक ये फिल्में रिलीज, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा जो फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन बहुत भारी उनकी प्रमोशन चल रही है, तो इनकी प्रमोशन को सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ये फिल्में कैसी होंगी, अच्छी होंगी कि बंडल होंगी? ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं. ऑप्शन ए इज दिस वन, ये प्रेम मोलिया राजश्री प्रोडक्शन की ये फिल्म है. अफकोर्स सूरज बरजात्या की ये फिल्म जिसमें कि आयुष्मान खुराना इज गोइंग टू टेक ओवर द गद्दी ऑफ प्रेम फ्रॉम सलमान खान. क्या लगता है आपको, यस नो?
2: सर उम्मीद प्रेम तो प्रेम ही है, पुराना प्रेम. हाँ. जो सूरज बरजात्या की मूवी में प्रेम नाम से सलमान खान वाज ऑलवेज नोन फॉर, एंड सलमान खान इज वन ऑफ द फेवरेट वन. यस ऑब्वियसली आई एम श्योर आयुष्मान खुराना विल बी एबल टू डू, ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट है तो अपना बेस्ट तो पुट करेंगे. सो नो कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे वो, बिकॉज ऑब्वियसली मूवी बनी है तो बहुत मेहनत की होगी.
0: अजहर भाई ये आपका वो अप्रेजल नहीं चल रहा है, बॉस के सामने नहीं बैठे हो आपको कि आपको कि आपको मक्खन लगाना है? हेलो, मैं आपसे ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टली बताओ. अच्छा, हाँ या ना, पिक्चर कैसी लग रही है, अच्छी के बंडल?
2: बोला दो ऑप्शन दोगे, एक तो अभी एक ही दे, दूसरा वाला तो बताओ.
0: नहीं नहीं नहीं, वो पहले इसके बारे में बताओ, हाँ के ना?
2: मुझे लगता है अच्छी होगी, आयुष्मान खुराना अच्छा एक्टर है तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए.
0: और दूसरा ऑप्शन है रामायण. जब से मिस्टर बीस्ट आए हैं रामायण के प्रमोशन में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है उन 4,000 करोड़ के बारे में. आपको क्या लग रहा है? गिव मी अ नॉन डिप्लोमेटिक आंसर प्लीज.
2: आई थिंक वो मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी बिकॉज
0: 4,000 करोड़ खर्च किया है तो अच्छी होगी पिक्चर. यार क्या कर रहे
2: हैं?
0: वेरी गुड है, चलो आपको कोई हिला नहीं सकता अजहर भाई. चलो लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीन सुनाया था एंड आपको पूछा था कि कौन सी ये फिल्म है, एक बार फिर से सुनते हैं सीन.
3: ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ. हाँ, ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
4: लिसन जेंटलमैन.
3: लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है?
0: लिसन जेंटलमैन कौन सा नाम, कौन सी फिल्म है, ये वाला नाम था बताओ यार.
2: सर ये गुरु गुलाब खत्री था फ्रॉम हमारा आवारा पागल दीवाना
0: विद अ गुलाब टैटू ऑन द बैक ऑफ हिज नेक. यार मतलब
2: कह रहे
0: आई डोंट नो इफ इट्स इंस्पायर्ड बाय दीपिका पादुकोण और नॉट, बट कांग्रेचुलेशंस, दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए.
2: थैंक्स.
0: अरे किसको लेके जाओगे ये तो बता दो, इसमें भी डिप्लोमेसी?
2: नहीं नहीं, ऑब्वियसली वाइफ को लेके जाऊंगा.
0: चलो सही है, एंजॉय योरसेल्फ. टेक केयर.
2: थैंक यू सो मच.
0: दैट इज अजहर, हमारे आज के विनर हैं ऑफ 2 ओपन मूवी टिकट्स. मतलब यू कांट शेक हिम, हाउ स्किलफुल. बहुत कोशिश कर ली मैंने यार, सम पीपल आर सो गुड एट डिप्लोमेसी. बट या रोज सुबह हम लोग खेलते हैं द बिग बॉलीवुड क्विज एंड अ चांस फॉर यू टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: बिग
5: फायर है तू,
6: वाइल्ड फायर है.
7: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 10:08।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And talking about Ghungru Toot Gaye, do you remember the first time you heard Abida Parveen's voice? I mean, बहुत कम ऐसी आवाजें होती हैं जिसको सुनकर आपको लगता है कि यार ये रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या कुछ अलग ही सुन लिया. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोस्ट पीपल फेल्ट व्हेन दे हर्ड आबिदा परवीन्स वॉइस. एंड देन कैलाश खेर की आवाज़ सुनकर भी ऐसा ही हुआ. आई थिंक इट वाज इन टूटा टूटा एक परिंदा. दैट इज द फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ अस हर्ड कैलाश खेर्स वॉइस. एंड इमेजिन इफ बोथ दीज सुपरस्टार्स लेजेंड्स कम ऑन द स्टेज एट द सेम टाइम, इट्स गोना बी प्योर मैजिक, नथिंग लेस. The question is, are you ready for an evening where these two legendary voices are going to come together on one stage? Pantheon presents Borderless Melodies. Aisa ho raha hai. The legends Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. Two legends, one stage, unforgettable musical evening hogi. And you can mark your calendars, 13th of November, Dubai World Trade Center pe. Tickets available now on Platinum List. Don't wait, you can book yours today. It's brought to you by Hop Events, creating experiences that stay with you long after the music ends. Event made large by Big 106.2. Two legends, one stage. Abida Parveen, Kailash Kher, 13th November. Book your tickets now. Song's coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
0: Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ
4: आमिर. मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान. तो कितनों की जान है आप?
5: मॉम की जान.
4: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया. करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. मजेदार गेम है. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट. 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए.
5: एप्पल.
4: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो. 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं.
5: पालक पनीर.
4: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान. ये नहीं हो पाएगा आपसे.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
1: It is 10:27 on the clock and let's take a look at the usual hotspots. Zyada kahin pe traffic kahin pe bhi nahi hai. 311 pe you'll find a bit of slow moving traffic. Sabse pehle going towards city center Mirdev, and then a bit going towards international city as well. Zyada koi concerning cheez nahi hai yahan par. Then also E11 par halka bulka hi traffic. Alnada interchange 1 par aapko milega. S112 Sharjah Industrial pe a bit of congestion. Nothing else that pops out. In case aapko kuch dikhta hai, let me know. Give me a call. 800-1062 par.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: जिंदा, कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: कॉर्पोरेट फर्रे, वो फर्रे जो आपके ऑफिस में चिपकाए जाते हैं, इट्स एन एंटायर जॉनर इन इटसेल्फ.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: नहीं मतलब थिंक अबाउट इट, इफ यू नो आपके ऑफिस की जिंदगी, देयर सो मेनी शोज दैट आर मेड द ऑफिस एटसेट्रा, अगर आपकी ऑफिस की लाइफ पे इतने शोज बन सकते हैं, देन कॉर्पोरेट जो फर्रे होते हैं, दैट इज एन एंटायर जॉनर इन इटसेल्फ, बिकॉज आई फाउंड सो मेनी इंटरेस्टिंग वंस, राइट. द लेटेस्ट वन इज किसी कंपनी में बेनिफिट्स के मामले में एक फर्रा चिपकाया गया एट द नोटिस बोर्ड. इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉइज बिग ब्लैक अक्षरों पर, अ स्नैक विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू टुडे एट द फूड कोर्ट इन अप्रिसिएशन ऑफ योर हार्डवर्क. आपकी कड़ी मेहनत और काम को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें आपको कुछ खाना खिलाना चाहिए, हमें आपको एक स्नैक देना चाहिए. नीचे लिखा हुआ है टुडे स्नैक और उसके भी नीचे बनाना, एक केला मिलेगा एंड उसके भी नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल 9 AM अंटिल 7 PM एंड ऑन दिस डेट ओनली. क्या कहना है आपके इस ऑफिस के बारे में? वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर वर्क प्लेस कांट बी वर्स देन दिस ईयर. देखो अगर खिलाना ही है तो अगर अच्छा ट्रीटमेंट देना ही है, अगर आप मेहनत करवा ही रहे हो तो एटलीस्ट आई मीन यू हैव टू गिव देम समथिंग गुड. यू कांट हैव लाइक अ बनाना. आई मीन आई वुड रिकमेंड Papa John's and the new pan pizza. It's loaded with crispy garlic parmesan crust, edge-to-edge toppings, Italian seasoning, soft fluffy pan-baked base, 360 cheese, degrees cheesy goodness, cheese on top around the sides, at the base, 6 cheese blends layered all around, more crunch, more cheese, more toppings in every bite. Try the Papa John's new pan pizza today at a Papa John's near you or order online. Papa John's, better ingredients, better pizza. Any HR people listening?

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: was near the centre of fighting between pro-Assad and rebel forces during the civil war. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: तुम भी सॉरी तानिया, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, that's more my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. फ्राइडे वाइब्स आर ऑन. बहुत कुछ हो रहा है इस वीकेंड. थिएटर्स में एक आध मूवी रिलीज हुई है लेकिन बाहर बहुत कुछ करने के लिए है. व्हाट इज इट अबाउट बताती हूँ अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स वीकेंड राइट नाउ, शुरू हो चुका है वीकेंड वाइब्स एंड आई होप कि वेदर आल्सो बिहेव्स लाइक वीकेंड। फिलहाल 37 डिग्रीज हो रहे हैं विद 40% ह्यूमिडिटी।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड आज है फ्राइडे. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म परिणीति की वंस अगेन. उसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव. ऑफ कोर्स ये एक मूवी है. वन टाइम वॉच लग रही है क्योंकि एंड में जाके तो पता लग ही जाएगा कि भाई रिपोर्टिंग सही थी या नहीं थी. इट्स अ मिस्ट्री केस, मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. जॉनरा भी उसका उसी में है. दैट इज व्हाई इट्स अ वन टाइम वॉच. लेकिन आज फ्राइडे है यार. फ्राइडे फ्राइडे को कौन जल्दी सोता है. There's more to come. क्या क्या कर सकते हो आप, क्या क्या देख सकते हो आप. Going to tell in a bit. Until then, keep

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबू राव गणपत राव आपते बोल
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ
4: आमिर. मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान. तो कितनों की जान है आप?
5: मॉम की जान.
4: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना घुमा के, बहुत बढ़िया. करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. मजेदार गेम है. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट. 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए.
5: एप्पल.
4: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो. 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं.
5: पालक पनीर.
4: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान. ये नहीं हो पाएगा आपसे.
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Watch out for congestion on Al-Ittihad Road, E11, particularly around Al-Nada and Sahara Center. There are also delays around Sheikh Mohammed bin Zayed Road, E311 near Al-Ghaziz, and on Al-Khail Road, E44 around Jumeirah Village Circle. If you're traveling through Barsha Heights, keep an eye on Hisa Street. Uske alawa kahin aur phase ho, let me know, call karke 800-1062 par.
7: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
8: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड अक्टूबर थोड़ी याद है, या तो आपको इस मंथ में प्यार होता है या फिर आप ब्रेकअप करके मूव ऑन हो रहे हो, तो देयर इज सम शिफ्ट और यू नो द. लेकिन दिस टाइम लव स्टोरी शुरू होने वाली है आपकी और मेरी, तो पता नहीं कौन से जमाने में होगी. लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ज़ाहिर इकबाल ऑन स्क्रीन वाली लव स्टोरी शुरू होने वाली है 23 अक्टूबर. फिल्म का नाम है तू मेरी किरण. कहानी इन सिनेमास 23 अक्टूबर. एंड ये कहानी बताएगी भाई डिफरेंस बिटवीन लव एंड ऑब्सेशन. एक्चुअली आपको डिफरेंस ये बताना है कि इस कहानी को आप लव कैटेगरी में रखोगे या फिर ऑब्सेशन कैटेगरी में रखोगे. हालांकि ऑब्सेशन फिल्म देखने के बाद हमारी डेफिनेशंस जो हैं ऑब्सेशन की बदल चुकी हैं. वेल, ज़ाहिर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा की ये पहली मूवी साथ में नहीं है. देयर इज़ वन मोर फिल्म जिसमें ये दोनों साथ में थे. अगर आपको पता है उस फिल्म का नाम बताओ मुझे कॉल करके 800-1062 पर.
3: तो समझो ना मेरे दिल की
2: तमन्ना का ट्रैक. ये फिल्म जो है अभी भी थिएटर्स में लगी है बाय द वे. तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म है. वन टाइम वॉचर जाके एक्चुअली देख सकते हो. द सॉन्ग कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2. कीप इट लॉक्ड.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरिजीत सिंह का ट्रैक सॉन्ग का नाम था तेरी मेरी कहानी, लेकिन ये कहानी है फिल्म जिसका नाम है तू है मेरी किरण।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। 23 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी इन सिनेमाज एंड मैंने ट्रेलर देखा यार, मैं रह ही नहीं पाई कि मैं आपसे शेयर ना करूँ। स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा एंड जाहिर इकबाल इन द मेन लीड्स। ये कहानी है ऑब्सेशन या प्यार की, ये आप डिसाइड करोगे।
2: I love you, किरण। अगर ये एक तरफा प्यार हुआ तो छूट जाएगा मेरा। तुम्हें भी मुझे प्यार करना होगा किरण।
3: लिसन, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। आज के बाद तुम मुझे कभी फोन नहीं करोगे, समझे?
2: तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम जानती हो हमारा कनेक्शन कितना स्पेशल है।
3: क्या बकवास कर रहे हो?
2: ये कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहानी तो अब शुरू होने वाली है।
0: And here's the plot twist.
3: ये तुमने कैसे किया? सुनो, तुम्हें जो चाहिए सब ले लो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
2: अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता किरण।
3: मेरे चोट का निशान कहाँ गया?
2: कौन सा निशान? जो होने वाला था ना, वो अब होगा नहीं किरण।
4: किरण, कोई तुम्हें पागल बना रहा है और तुम पागल बनती चली जा रही हो।
2: और मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ।
3: तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
2: I love you too.
0: God, this is actually just not obsession. ये बहुत thrill वाली कहानी होने वाली है। And कहते हैं यार, प्यार में जज्बात पलट दिए, वक्त बदल दिया। भाई, इन्होंने तो सच में वक्त बदल दिया है। Plot twist यही है कि वक्त बदल जाता है, जो उसे चोटें लगी होती हैं वो नहीं लगती हैं, अब wounds पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। All he wants is के वो उसके प्यार में बस पागल हो जाए, लेकिन पागल नहीं है तो। 23 अक्टूबर इन सिनेमाज दिस स्टोरी जिसका नाम है तू है मेरी किरण, रिलीजिंग इन सिनेमाज। लेट्स सी कैसी होती है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Market.
1: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ Avni आपके साथ. And भाई ये क्या क्या crazy crazy crazy चीजें हो रही हैं यार. China has bathrooms that show how long you have been inside. कुछ public bathrooms में in China there are digital timers above the stalls जहाँ पर लिखा होता है कि आप कितनी देर से अंदर हैं. और अगर ये system आपके घर में लग जाए तो आप मुझे बताओ जरा कि किसका number सबसे ज्यादा आएगा. कौन है वो शख्स, कौन है वो इंसान जिसका टाइमर जा सकता है आराम से 30-35-20 मिनट्स भी लगा लो. बताओ मुझे कॉल करके 800-1062 पर. देखते हैं भाई जो लोग कहते थे ना
4: मेरे सोने आ, सोने आवे वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना.
3: इनका दिल हमेशा बाथरूम में क्यों लग रहा होता है. बाय द वे वाइफ्स को बहुत दिक्कत होती है कि हस्बैंड इतना टाइम अंदर करते क्या है. अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस है बताओ मुझे 800-1062 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके. 800-1062 इट इज.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present Nayi Naveli, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: ना ऑफिस वीकेंड बिहेवियर दे रहा है और ना ही ये वेदर। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 42% पे विद टेम्परेचर 37 डिग्रीज।
5: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
5: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ. और मैंने पूछा था कि ऐसा इंसान, ऐसा शख्स आपके आसपास या फिर आप खुद जो वॉशरूम में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. हाय करण.
3: हाय अवनी.
2: कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
2: बड़े लो साउंड कर रहे हो.
3: तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ.
2: चलो, किसी का तो वीकेंड शुरू हो चुका है. बताइए कौन इतना टाइम स्पेंड करता है वॉशरूम में?
3: हमारे मामा जी, मामा श्री.
2: कितना, क्या मैक्सिमम लिमिट है उनकी?
3: वन टाइम तो ही टुक ऑलमोस्ट लाइक 60-65 मिनट्स इजीली.
2: One hour above. You serious?
3: I swear, yeah. He, मतलब ये उनको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए वही जगह मिलती है. पूरा घर खाली पड़ा है बट उनको रीले वही स्क्रॉल करनी है.
2: वाईफाई सिग्नल अच्छे आते होंगे ना वॉशरूम में, रूटर चेंज कर दो.
3: एक्चुअली ये भी एक मतलब हॉल का जो वॉशरूम है वो बिल्कुल जहाँ राउटर रखा है उससे लाइक 10-20 मीटर की दूरी पे ही है.
2: मैंने कहा था मैं स्मार्ट हूँ. फिर मामी को दिक्कत नहीं होती है?
3: नहीं, मामी अलग कमरे में, मामा अपना अलग.
2: पर होता है ना कि वाइफ्स को दिक्कत होती है, पता नहीं हस्बैंड अंदर बैठ के करते क्या रहते हैं, बाहर ही नहीं आते हैं.
3: ऐसा नहीं है, वो अपने में चिले.
2: आदत पड़ी कहाँ से आपकी मामा श्री को? आपने पूछा नहीं कभी?
3: नहीं, हम नहीं पूछते भैया.
2: आपको भी अंदर लॉक कर देंगे दूसरे वाले में.
3: आ गए भैया, तुम भी जाओ, तुम भी एक घंटा वहीं बैठो, चाय भी हमारे पास.
2: थैंक यू सो मच करण.
3: थैंक यू
2: सो मच फॉर शेयरिंग. यू टेल मी कॉल करके 800-1062 पे अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिससे आप परेशान हो भाई कि इतना टाइम कौन लगाता है वॉशरूम में. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:05। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मुकाबला तो भाई मेरे मील्स के बीच में चल रहा होता है कि भाई सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड जितना मैं मील्स के बारे में सोचती हूँ ना कि यार प्रोटीन होना चाहिए ना, आज मैंने फ्राइडे लंच के लिए खाया है 2 प्रोटीन रिच चपातीज विद लौकी की सब्जी। एक चपाती में 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था, कैसे ये मत पूछना। मैं कैलकुलेट करती रह जाती हूँ यार कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मुझे किसमें मिलेगा। फ्राइडे लंच के लिए तो मैंने प्रोटीन रिच लंच कर लिया, लेकिन वीकेंड है अब, फ्राइडे रात की जब बारी आएगी तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस कैलकुलेशंस के अलावा अगर आपको जीतने हैं ओपन मूवी टिकट्स, व्हाट्सएप करो मुझे इस नंबर पर 0543091062। मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे हम खाओ पियो ऐश करो दिस गेम, जिसको खेलने के बाद आपको पक्का भूख वापस से लग जाएगी। एंड जस्ट नॉट दैट, यू ऑल्सो गेट ओपन मूवी टिकट। 0543091062 इज द नंबर। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
4: मॉम की जान।
3: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
4: एप्पल।
3: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
4: पालक पनीर।
3: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Clearly, weather is not weakening at all. 37 degrees हो रहा है फिलहाल, with humidity 45%. And जैसे-जैसे शाम होती रहेगी, ये humidity बढ़ती रहेगी, even on the coming weekend.
0: Al Ras auto AC spare parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East, with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA, and Bahrain. Visit alras.me. Big one.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and it's time we play खाओ पियो ऐश करो. आज हमारे साथ कौन है? Hello.
2: Hi, this is Palak.
1: कैसी हैं पलक आप?
2: I'm very well. आप कैसे हो?
1: ठीक हूँ. आपने लंच कर लिया?
2: जी जी.
1: क्या खाया आज लंच में आपने?
2: आज we had Chinese food.
1: ओह, फ्राइडे है ना, वीकेंड वाइब्स चाहिए.
2: हाँ, डेफिनेटली.
1: अच्छा, डू यू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक पलक?
2: समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम.
1: इतना नहीं. वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो आप?
2: वेजिटेरियन.
1: भाई भाई, कैसे करते हो प्रोटीन पूरा? प्लीज मुझे बता दो, थोड़ा सा हल्का फुल्का चलेगा?
2: कभी कभी जब मौका लग जाता है, आई डिप इन टू आइदर द प्रोटीन पाउडर दैट माई हस्बैंड यूजेस. कभी टोफू खा लिया, कभी सोयाबीन खा लिया, बस उतना ही.
1: टोफू तो मैं से चुन चुन के खाती हूँ ना. आई डोंट लाइक टोफू, तो मैं बस इसे धक्के से ऐड करके खाती हूँ. पनीर, आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट.
2: Yeah.
1: Okay, I'm gonna ask you few dishes. आपको दोनों में से कोई एक डिश चूज करनी है कि ज्यादा पसंद कौन सी है. And it's going to be a rapid fire, okay. तो आपको rapidly answer करना है.
2: Okay.
1: And आज वाली protein dishes ही है. पलक, what would you choose between पालक पनीर या पनीर भुर्जी?
2: पनीर भुर्जी.
1: पनीर भुर्जी या tofu stir fry with rice?
2: पनीर भुर्जी.
1: पनीर भुर्जी या फिर पनीर बटर मसाला?
2: पनीर बटर मसाला.
1: पनीर बटर मसाला या फिर सोया चाप?
2: पनीर बटर मसाला.
1: पनीर बटर मसाला या फिर पनीर टिक्का रैप?
2: पनीर टिक्का रैप.
1: पनीर टिक्का रैप या फिर दाल खिचड़ी?
2: पनीर टिक्का रैप.
1: पनीर टिक्का रैप या मूंग दाल चीला?
2: पनीर टिक्का रैप.
1: पनीर टिक्का रैप या फिर दाल मखनी?
2: दाल मखनी.
1: दाल मखनी में प्रोटीन होता है?
2: I don't know, but tasty बहुत होती है.
1: दाल मखनी में क्रीम ज्यादा होती है कि प्रोटीन ज्यादा होता है?
2: I think दोनों. अगर दोनों बोलेंगे तो you can eat it guilt free.
1: That's actually right. भाई ये तो है, वेजिटेरियंस दाल मखनी और नान तो बोलते हैं, नान तो कार्ब्स है, ठीक है, गार्लिक है उसमें, लेकिन दाल मखनी तो प्रोटीन है यार, है ना?
2: हाँ.
1: अच्छा, लास्ट, दाल मखनी के राजमा चावल?
2: दैट्स अ टफ वन. आई से राजमा चावल.
1: राजमा चावल या छोले चावल?
2: राजमा चावल.
1: पनीर लाइंग एट द कॉर्नर क्राइंग कि मुझे किसी ने चूज नहीं किया है. Thank you so much, Palak, for calling. Thank you.
2: Thank you.
1: If you want to play this game with me, all you have to do is give me a WhatsApp message on 0543091062.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मैं पूछ रही हूँ यार आपसे, कब तक आप अपने YouTube पर अपने फेवरेट डुओ सिंगर्स के रीमिक्सेस देखोगे? When you actually have a chance to witness it live. Two legends, one stage. Dubai, are you ready for two legendary voices जो आने वाली हैं एक ही साथ एक ही स्टेज पर? Pantheon presents Borderless Melodies featuring the legendary Abida Parveen and Kailash Kher live in concert.
2: Oh

कैलेंडर, मार्क योर कैलेंडर्स फॉर 13th November एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। टिकट्स अवेलेबल हैं अभी प्लैटिनम लिस्ट पर, तो वेट मत करो, अभी के अभी अपनी जगह बुक करो, इससे पहले सबकी सब सोल्ड आउट हो जाए यार। Soulful voices, two legends, one stage. Brought to you by Hop Events, creating experiences that stays with you long after the music ends. Event made large with Big 106.2. ये दो legends एक stage पर, आबिदा परवीन, कैलाश खेर, 13th November को आने वाले हैं World Trade Center पे। अपनी tickets अभी की अभी book करो, and until then keep it locked to Big 106.2.

0: का।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: 4:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, 2% ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। 36 डिग्री राइट नाउ विद 49% ह्यूमिडिटी।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
5: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा हुआ ट्रैक फ्रॉम द फिल्म धुरंधर एंड इट्स एक्चुअली वन सॉन्ग जो ना आपको ड्राइव पर जाते हुए सुनने को बड़ा मजा आता है.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड कोई मुझे ड्राइव पे चलने के लिए बोल दे और मैं मना कर दूं डिस्पोजेबल. आपको भी बहुत ही स्मूथ बढ़िया राइड पे जाना है. यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी नाउ फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. विजिट करना है आपको selfdrive.ae पर TNC अप्लाई. यू कैन एक्चुअली हैव योर स्मूथ राइड ऑल वे लॉन्ग. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म जिसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव स्टारिंग परिणीति चोपड़ा इन द मेन लीड्स. लास्ट उनकी वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर ही जिसका नाम था शक, लेकिन जेन्युइन यार वो शक रियलिटी में बदल गया क्योंकि वो पूरी तो मैं नहीं देख पाई. परी से शक हटाना है तो ये फिल्म देख लेना नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव. रिव्यू हो जाएगा अपलोड. अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
4: Missed your morning buzz?
5: उठा ले रे बाबा।
4: ये सुनो।
6: गुड मॉर्निंग सिद भाई, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं?
7: काम पे पहुंच गया क्या?
6: बस जस्ट रीच्ड।
7: कैसा रहता है फ्राइडे को, मतलब मन करता है काम पे जाने का?
6: सर हमको तो हर दिन काम करना पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर इन रिटेल, तो हमें तो एब्सोल्युटली मन करता है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज।
7: थैंक यू, वेरी गुड। ये अच्छी ऑस्कर एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो अब काम की बात करते हैं। आप बड़े बॉलीवुड के फैन मुझे लग रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके? जो फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन बहुत भारी उनकी प्रमोशन चल रही है, तो इनकी प्रमोशन को सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ये फिल्में कैसी होंगी, अच्छी होंगी कि बंडल होंगी? ऑप्शन ए इज दिस वन, ये प्रेम मोलिया, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म है, आपको सूरज बरजात्या की है ये फिल्म, जिसमें कि आयुष्मान खुराना इज गोइंग टू टेक ओवर द गद्दी ऑफ प्रेम फ्रॉम सलमान खान। क्या लगता है आपको? यस नो? उम्मीद
6: प्रेम है? तो प्रेम ही है, पुराना प्रेम। हाँ। जो सूरज बरजात्या की मूवी में प्रेम नाम से सलमान खान वाज ऑलवेज नोन फॉर, एंड सलमान खान इज वन ऑफ द फेवरेट वन।
7: ऑनेस्टली बताओ हाँ या ना, पिक्चर कैसी लग रही है?
6: मुझे लगता है अच्छी होगी, आयुष्मान खुराना अच्छा एक्टर है तो ऑब्वियसली अच्छी होगी।
3: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: AM, the Big Breakfast with Sid, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: ऐसा स्ट्रीट अराउंड बर्षा हाइट्स आपको मिलेगा कंजेशन. उसके अलावा अलखियल रोड पर देर इज ट्रैफिक नियर जुमेरा विलेज सर्कल एंड इंटरचेंज टुवर्ड्स शेख मोहम्मद बिन जायद रोड. अगर आप शारजा जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली अराउंड अलनादा एंड सारा सेंटर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा. कहीं और फंसे हो लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
2: नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटवर्ड एंड स्कोडा. प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. विजिट selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड वीकेंड आते ना हमें घर के काम याद आ जाते हैं कि भाई पूरे वीक में ये भी रहता था, वो भी रहता था। एंड अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस, यू ऑलरेडी नो अल्फ्रेड फ्रॉम इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए ई। एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन एंड मॉर्गेजेस टू। विजिट करना है आपको क्रेडिट मार्केट डॉट ए ई पर, या फिर आप कॉल कर सकते हो 800 अल्फ्रेड पर। वीकेंड पे वीकेंड के काम करते हुए उड़ी, कीप इट लॉक टू बिग 106.2। मिलती हूँ आपसे आपको संडे को द बिग रेकमेंड्स के साथ 3 से 6। अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2। हैप्पी वीक।

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: कैप।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक।
3: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जिल
2: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट
1: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2 brought to you by insurancemarket.ae.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
5: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
4: Amazon MGM Studios एंड कलर येलो प्रोडक्शन प्रेजेंट नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर एंड अदर्स। रिलीजिंग 16th अक्टूबर इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। टू विन इनवाइट्स कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 35 degrees feels like 43 because of the humidity which is around 54%. Aaj low jayega around 30.
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Chase Banks, come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली फील्स है. वैसे वीकेंड जिंदगी के हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे बदल सा जाता है. नाउ फ्रेंड ऑफ माइन हुज विजिटिंग यूएई मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. ऑफ कोर्स ही इज अ फ्रेंड फ्रॉम माय होम टाउन भोपाल, एंड उसने मुझे मेरी प्राइम में देखा है, विच वॉज नॉट लॉन्ग बैक. आई एम टॉकिंग अबाउट 2021. सो ही मैसेज मी, कैन यू सजेस्ट मी नाइस प्लेसेस जहाँ पे मैं पाड़ी शाड़ी कर सकता हूँ. मैंने बोला वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, पर मैं बता सकती हूँ कि अच्छे टमाटर और सस्ती सब्जी कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरा वीकेंड प्लान कुछ ऐसा ही होता है, अच्छे टमाटर सस्ती सब्जियाँ लेना. फिलहाल प्लान जो भी हो, आज शाम वाले आर हेडिंग होम. अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं, वी आर कारियोके. Tomorrow happens to be Rekha Ji ka birthday and aaj sham ye gana Rekha Ji ke hi naam hai. Again a classic, she's given us some brilliant music and tomorrow is Rekha Ji's birthday. 11th ko Bachchan sahab ka birthday hai. To is gaane mein aapko dono ek saath dikhai diye the and gaana sunayenge aap. Let me see how many of you remember this classic from the 70s.

0: अब जो लोग मेरी तरह वीकेंड पे टमाटर खरीद रहे हैं उन्हें ये गाना 100% याद होगा. अगर याद आ गया है 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कारियोकिंग सेलिब्रेटिंग रेखा जी आश्रम ऑन द बिग थ्रिल.
1: कारियोकी.

में इश्क मेरी जान तेरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान तेरा कबूल कर लो, तू हमसे प्यार कर।

0: चैन है हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो।
1: वाह, ट्रैक पे गाना आपका तो बनता था क्योंकि आप तो हर फ्राइडे ये करते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन याद है आपको इसमें?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो जी, अब अमित जी की आवाज में अमित जी का वर्जन सुनेंगे हम।

0: कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए,
1: सलामे इश्क मेरी जान। अमित मजा आ गया, मतलब आई डोंट हैव टू से, आप ये हर फ्राइडे करते हैं तो यू आर अ प्रो एट इट। तो ऐसे गाने गाते हैं लोग आपकी तरह के बेसुरे भी आते हैं?
0: मैं तो आई वुड रेट माय सेल्फ एज 5 और 6 on 10।

0: आ गया, मतलब आई डोंट हैव टू से, आप ये हर फ्राइडे करते हैं तो यू आर अ प्रो एट इट. तो ऐसे गाने गाते हैं लोग आपकी तरह के बेसुरे भी आते हैं?
1: मैं तो I would rate myself as 5 or 6 on 10. बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं.
0: Event organizer is talking from a different POV. But कौन सा गाना है जो लोग सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं अमित?
1: बिगाड़ते हैं अरिजीत के गाने ट्राई करने वाले वो लोग खराब कर देते.
0: Thank you so much for singing for us and I would love to be a part of your karaoke nights.
1: We would also want you to be there.
0: हाँ, मैं आके मैं और चार चांद लगाना चाहती हूँ इन बिगड़ते हुए गानों में. You have a great weekend. Enjoy your event.
1: Thank you.
0: अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं तो बस सलाम इश्क मेरी जान गाना 800-1062 is the number to dial.
2: Karaoke. Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

karaoke. We are karaokeing here while you're heading back home. जब आप जाम में होते हैं हम यहाँ जाम करते हैं. अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं then 800-1062 is the number to dial. फिलहाल without any training घर से गाते गाते Mondal Brothers Bollywood तक पहुंच गए with पति पत्नी और वो दो. वैसे आयुष्मान खुराना की एक बड़ी कमाल मूवी अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है उड़ता तीर विद सारा अली खान. He's got two massive releases. One in October, उड़ता तीर धर्मा की मूवी है. एंड देन 27 नवंबर को रिलीज होगी ये मूवी दैट आई एम सो ईगरली वेटिंग फॉर राष्ट्रीय फिल्म्स की ये प्रेम मोलिया. अब मुझे ना सूरज बरजातिया की मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं. मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं कभी कोई लड़का मुझे देखने आए मैं एक सूरज बरजातिया की एक्ट्रेस की तरह हीरोइन की तरह शर्माऊँ एक्टिंग करूँ. बट ये मौका मिला नहीं है मुझे आज तक.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अब एक स्टोरी ना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है एंड लॉट ऑफ वाइव्स आर कमेंटिंग. मेरे पास तो है नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. तो एक बीवी ने अपने हस्बैंड को ग्रोसरी लेने के लिए भेजा एंड शी सेड के बाय वन कार्टन ऑफ मिल्क एंड इफ दे हैव एवोकाडोस बाय 12. हस्बैंड घर आया 12 कार्टन्स ऑफ मिल्क लेके. बीवी ने पूछा गुस्से में कि यार 12 कार्टन मिल्क क्यों लेकर आए हो, तो उसने कहा क्योंकि उनके पास एवोकाडोस थे. आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज अ लेजिट स्टोरी दैट्स गोइंग वायरल. सो इफ यू आर अ हस्बैंड लिसनिंग टू मी राइट नाउ, तो हाउ गुड आर यू एट गेटिंग ग्रोसरीज. मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि ये लेकर आओ, ये वाली दाल होनी चाहिए, तो आप फर्क समझ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, या फिर यू गो विद द लिटरल मैसेजेस दैट हैव बीन सेंट टू यू. एंड एज अ वाइफ, कभी आपके हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया है? डू लेट मी नो 800-1062 पर. व्हेन आई कम बैक वी प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे साउंड्स इजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, bringing in the weekend, Mahumansi. This is The Big Thrill, and the question is, which is also up on our Instagram page, how good are you as a husband to get groceries? Matlab, bahut sari qualities apne partner mein ladkiyan dekhti hain. I think groceries sort karna, groceries leke aana should be one of the qualities, but I personally know a lot of men जो ग्रोसरीज बहुत कमाल लेकर आते हैं. अब ये स्टोरी वायरल हो रही है जिसमें बीवी ने हस्बैंड को भेजा दूध लेने के लिए, कहा कि एक कार्टन दूध लेकर आओ, इफ दे हैव एवोकाडोस बाय 12, तो वो 12 कार्टन दूध लेके आ गया. सो दिस इज माय क्वेश्चन कि कभी आपके पतिदेव ने भी ऐसी कोई गलती की है? डू यू हैव टू इंस्ट्रक्ट हिम टू द टी? एंड अगर आप खुद पतिदेव हैं तो कभी ऐसा कुछ हुआ है? लेट मी नो 800-1062 पर. वी आर ऑल्सो प्लेइंग दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट जितने लोगों ने खेला है हार्डली कोई 5 सेकंड में जवाब दे पाता है. तो इफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज, गिव मी अ कॉल.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: Bollywood.

एक शाम जहां दो लेजेंडरी आवाजें एक साथ एक ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगी। पैंथियन आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट। एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल इवनिंग ऑन द 13th ऑफ नवंबर एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। टिकट्स आर नाउ अवेलेबल प्लैटिनम लिस्ट पे, सो डोंट वेट, फटाफट बुक योर टिकट्स, दे विल बी सोल्ड आउट इन नो टाइम। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस that stay with you long after the music ends. Event is made large by us, Big 106.2, the beat of Bollywood. Can't wait for the 13th of November. Two legends, one stage, ek unforgettable charm.

0: 93.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's.
1: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia, and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz?
2: Uthale re baba.
0: Yes, suno.
3: गुड मॉर्निंग सिद भाई, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं?
4: काम पे पहुंच गए क्या?
3: बस जस्ट रीच्ड.
4: कैसा रहता है फ्राइडे को, मतलब मन करता है काम पे जाने का?
3: सर हमको तो हर दिन काम करना पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर इन रिटेल, तो हमें तो एब्सोल्युटली मन करता है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज.
4: थैंक यू, वेरी गुड. ये अच्छी ऑस्कर एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. चलो अब काम की बात करते हैं. आप बड़े बॉलीवुड के फैन मुझे लग रहे हो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके? जो फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन बहुत भारी उनकी प्रमोशन चल रही है, तो इनकी प्रमोशन को सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ये फिल्में कैसी होंगी, अच्छी होंगी कि बंडल होंगी? ऑप्शन ए इज दिस वन. ये प्रेम मोलिया राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म है. आपको सूरज बरजाता की है ये फिल्म, जिसमें कि आयुष्मान खुराना इज गोइंग टू टेक ओवर द गद्दी ऑफ प्रेम फ्रॉम सलमान खान. क्या लगता है आपको? यस नो? उम्मीद
3: प्रेम है? तो प्रेम ही है, पुराना प्रेम. हाँ. जो सूरज बरजाते की मूवी में प्रेम नाम से सलमान खान वाज ऑलवेज नोन फॉर, एंड सलमान खान इज वन ऑफ द फेवरेट वन.
4: ऑनेस्टली बताओ हाँ या ना, पिक्चर कैसी लग रही है?
3: मुझे लगता है अच्छी होगी. आयुष्मान खुराना अच्छा एक्टर है, तो ऑब्वियसली अच्छी होगी.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 a.m. टू 11 a.m. द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: It is 35 degrees, feels like 42 because of the humidity, जो फिलहाल 56% पर है. आज लो जाएगा अराउंड 31.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: विराट और अनुष्का के बाद अगर कोई कपल गोल सीरियसली दे रहा है, रश्मिका एंड विजय, ऐसा घर वाला मिल जाए जो शादी इतने महीनों बाद भी वैसे ही देखे जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, आई थिंक जिंदगी सफल हो जाती है। प्यार का तो मुझे कोई स्कोप लग नहीं रहा अपनी लाइफ में, लेकिन कार का सॉलिड स्कोप है।
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: And talking about cars, you can now lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month. This is for a 12-month plan. Fantastic deals. Aaj hi visit kijiye selfdrive.ae for more details. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: We're playing the 5-second rule. Joining us right now is Mr. Zulfi.
3: Good evening, how are you?
2: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर. वीकेंड का इंतजार कर रही हूँ अंडे टमाटर खरीदने के लिए. आप क्या करते हैं?
3: I'm a teacher.
2: Oh my God, that is amazing. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप?
3: Business and economics.
2: चलो जी, अब तो टीचर आए हैं, इनके साथ खेलने में मजा आएगा. Let's play the game, Zulfi. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm gonna give you a few categories. आपने तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: Zulfi, quickly tell me तीन अनिल कपूर की मूवीज. This is a tough one.
3: लाडला बेटा एंड नायक.
2: एंड
3: नायक.
2: वेरी नाइस टीचर जिन्हें बॉलीवुड में इंटरेस्ट है. अच्छा, तीन ऐसी चीजें अबाउट योर प्रोफेशन दैट यू एब्सोल्युटली डिसलाइक.
3: अनोइंग स्टूडेंट्स मार्किंग पेपर्स एंड
2: टाइम का लास. तीन चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं आप खा भी सकते हैं.
3: क्यूकम्बर्स, एप्पल एंड कीवी.
2: Three red flags for you in a colleague.
3: Being annoying, asking too many questions and not doing his homework.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: मस्त हो के गावा लाके बंदे
1: टू लेजेंड्स वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज विद आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट 13th नवंबर एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बुक योर टिकट्स नाउ ऑन प्लैटिनम लिस्ट ब्रॉट टू लाइफ बाय हॉप इवेंट्स क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू ऑफिशियल रेडियो पार्टनर बिग 106.2
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae.

0: See apply.
1: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Meena Jewelers. Travel partner AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: Extremely slow moving traffic अगर आप हेसर स्ट्रीट ले रहे हैं एंड यू हेडिंग टूवर्ड्स जीवीसी जीवीटी ऑल द वे टूवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी अ 38 टू 40 मिनट डिले अलखेल पे भी स्लो डाउन मिलेगा आपको अगर आप हैं नियर द शेख मोहम्मद बिन जायद इंटरचेंज प्लस हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स शारजा राइट नाउ डेरा से शारजा इट्स पैक्ड अल एतिहाद रोड E11 भी सिवियरली कंजेस्टेड है इस वक्त स्पेशली अगर आप नहादा के आसपास हैं ऑल्सो पैची traffic marina is going towards jbr especially near marsa street it is kind of slow moving 18 to 20 minute delay us route pe bhi aapko milega anything else you'd like to report you have my number 800-1062
0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
4: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun.
1: Come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening. Yeah, Big Thrill. Now, Mansi, if you've not made any plans for Saturday, that is tomorrow, I've got the perfect plan for you. आप मैं और बहुत ही क्लासिक बॉलीवुड गाने दर्शन चोपड़ा की आवाज में. दर्शन चोपड़ा इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इफ यू एंजॉय इंटिमेट इवनिंग्स विद बॉलीवुड क्लासिक्स, दिस इज वेयर यू नीड टू बी. जिक्र आपके लिए लेकर आए हैं दर्शन चोपड़ा लाइव. आई गिव यू ऑल द डिटेल्स. ऑल्सो वी सेलिब्रेटिंग दिस मूवी आज शाम. आज ही के दिन 1992 की सबसे बड़ी हिट रिलीज हुई थी. आई गिव यू हिंट. संजय दत्त and Manisha Koirala. More hints when I come back, kickstarting this hour with...

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:05।
2: Bollywood.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: I can't wait.
2: Okay, okay. 3, 2, 1.
1: Yes!
3: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
1: Whoa, cheese all around.
2: And edge-to-edge toppings.
1: And crispy garlic parmesan crust, too.
2: Let me try.
1: Order your own.
3: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Now lease a brand new SUV from Jetur and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
6: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
5: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: Alright, slow moving traffic is what you will get. Satwa ke paas ek 20 se 25 minute ka delay. There's also patchy traffic in Sheikh Zayed. Not the usual, but a 29 minute delay. It is kind of standstill near Dubai Mall. Heavy traffic near Festival City, Dubai Creek Harbour. नादल हमर वर्का से मर्डिफ, मर्डिफ टू मुहिसना एक घंटे का डिले है फ्राइडे की शाम को भी. देयर इज आल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक नियर रीम राम एट द मोमेंट एंड हल्का पुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स फुरजान. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट लेट मी नो 800-1062 पर.
4: नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर्ट एंड स्कोडा प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. विजिट selfdrive.ae. TNC apply.
0: बिग 106.2. बिग

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2.
2: The Beat of Bollywood.
3: Good evening. This is the Big Thrill. Friday ki sham hai, weekend wali feels hai. And joining me is Swinny. Hi Swinny, how was your week?
4: Yeah, it was very good. Listening to you while driving.
3: Ha, sweet, best. कहते ऊंचे लोग ऊंची पसंद. फिलहाल सुनी मैंने कहानी अभी सुनी. आपकी शादी होगी?
4: मेरे बच्चों की भी शादी होगी.
3: अरे अरे अरे, तो आप तो परफेक्ट हो. सो देयर इज दिस लेडी जो इंस्टाग्राम पे कंप्लेन कर रही है कि व्हेन यू सेंड योर हस्बैंड आउट टू गेट ग्रोसरीज, उन्हें ना एकदम दो साल के बच्चों जैसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बिना इंस्ट्रक्शन के फंक्शन नहीं कर पाते हैं. शी आस्क्ड हिम टू गेट वन कार्टन ऑफ मिल्क एंड देन शी सेड इफ दे हैव एवोकाडोस ब्रिंग 12. वो 12 कार्टन ऑफ दूध लेके आ गया. तो आपके पति देव ने ऐसा कुछ किया है?
4: नहीं, वो मेरे बिना जाते ही नहीं ग्रोसरी करने.
3: बेस्ट बेस्ट. बट डू यू अग्री दैट दे नीड इंस्ट्रक्शंस और दे नीड गाइडेंस व्हेन डूइंग ग्रोसरी?
4: कभी कभी अगर ऐसा हो तो वो मुझे कहते हैं कि तू व्हाट्सएप कर दे क्या क्या लेना है, कि इतना ट्रेन किया हुआ है कि कितना कितना चाहिए.
3: अच्छा, कितने वक्त में उन्हें मसूर दाल और मूंग दाल का फर्क समझ आ गया था?
4: नहीं, दालों वाली ग्रोसरी नहीं करी कभी. करती हूँ.
3: तो कौन सी ग्रोसरी करते हैं?
4: वो तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर की छोटी मोटी.
3: अच्छा, अभी शादी को कितने साल हो गए आपके?
4: 28 years
3: के बाद भी आपको भरोसा नहीं है कि वो दालों की ग्रोसरी कर पाएंगे कि नहीं?
4: नहीं, वो नहीं है. फोटो भेजेंगे कि हरी वाली दाल लेनी है कि पीली वाली लेनी है.
3: स्वीट, हाउ स्वीट. सो दिस लेडी इज नॉट रॉन्ग. यू हैव टू सेंड देम विद प्रॉपर मैनुअल व्हेन यू सेंड देम टू गेट ग्रोसरीज, राइट?
4: True, very true.
3: Superb. फिलहाल क्या प्लान वीकेंड का स्विनी?
4: I'm coming back from Dubai to Sharjah, stuck in traffic, went to Prince Out. जी जी जी.
3: बहुत बढ़िया. आपने तो मतलब ऑलरेडी पार्टी शार्टी शुरू कर ली है.
4: आज थोड़ा रिलीजियस था कुछ.
3: अच्छा.
4: जी.
3: अच्छा, मतलब
4: मैं तो रेंडमली वो सुन रही थी व्हाइल ड्राइविंग. आई वाज विद माय डॉटर इन लॉ. क्या, चलो फोन मिला लेते हैं, लाइक बाय चांस हो गया.
3: बट स्विनी, आपकी आवाज से लग नहीं रहा है दैट क्या आप डॉटर इन लॉ वाली हो. आप तो खुद ही you know, you sound like a college kid.
4: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे बेटे की शादी को भी 1.5 साल हो गया.
3: संतूर मम्मी लग रहे हो आप एकदम.
4: अच्छा जी, थैंक यू सो मच.
3: लुक, यू सीम लाइक अ फन सासू माँ.
4: यार, हम लोगों का ऐसा ही चलता है दोनों का. लाइक, यू आर राइट.
3: है ना, शी इज लाइक मोर देन अ फन सासू.
4: या, शी इज लाइक मोर देन फॉर माय डॉटर.
3: हाँ, देखो, पति सपनों का मिले ना मिले, सास मिलनी चाहिए तो जिंदगी आसान हो जाती है. Thank you, Swinny. You have a great
4: Thank
3: evening.
4: So
3: Lovely
4: much.
3: Talking to you. Bye.
4: Same here, my dear. Thank Bye. You so much. Have a nice day. Bye.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: There's a poll up on our Insta page. In fact, अभी आपने सुना होगा कि how even after 28 years of marriage, husbands जो हैं वो grocery without instructions नहीं कर सकते हैं. If you want to give your opinion, if you agree with this poll के with manuals जो है वो भेजना पड़ता है husbands को to get grocery, otherwise they might end up buying something else, head to our Instagram page. Please vote 106.2 Big FM it is. Also, we're celebrating this movie आज शाम, जो आज ही के दिन 1992 में रिलीज हुई थी. फिरोज खान की मूवी स्टारिंग संजय दत्त, मनीषा कोइराला, नगमा, कबीर बेदी एंड विकी अरोड़ा. वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज ऑफ 1992. आइकॉनिक म्यूजिक. अगर आपको याद आ गया द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, पर्पल साड़ी में नगमा, भीगे भीगे से संजय दत्त, मार्शल आर्ट्स करते हुए इन बिटवीन अ रोमांटिक गाना, दैट्स योर हिंट. डू लेट मी नो 800-1062 पर.

0: तुम बीमार हो?
1: No.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, छटपटाहट, फटफड़ाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गुदगुद

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800 Alfred.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, Friday ki sham. In fact, we're also celebrating this movie, jo aaj ke din 9th of October 1992 ko release hui thi. One of the biggest hits of that year. Sanjay Dutt, Nagma, Manisha Koirala, Firoz Khan, Kabir Bedi. Once again, I haven't seen the movie, but I love the music. Filhal, Raman with me, jinhone kaha hai ki rati hui hai inhe ye movie. Waise movie ka naam kya tha, Raman?
3: Movie ka naam to Yelgar.
2: Absolutely correct.
3: Debut kiya tha Firoz Khan ke bete ne.
2: Acha, Firoz Khan ke bete ne? Wo to Fardeen Khan hai.
3: Ek aur bhi hai.
2: ओ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता जो मुझे चैट जीपीटी ने भी नहीं बताई.
3: उन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ.
2: बट मैंने ये मूवी देखी नहीं है, और जितनों ने नहीं देखी है, एक शॉर्ट से अंदाज में अगर रमन आप बताओ कि क्यों देखनी चाहिए ये मूवी.
3: देखो, बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पहले देखी थी, पर मूवी बहुत अच्छी. फिरोज खान का डायरेक्शन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, हर फिल्म का. उनकी जितनी भी फिल्में आई है, यलगार आई, अपना
2: जाबाज,
3: कुर्बानी देखी, जांबाज देखी, जांबाज तो अल्टीमेट थी, श्रीदेवी की एक्टिंग थी उसमें तो. और उसके अलावा उनकी वो थी धर्मात्मा भी, उनकी फिल्म थी. उनका शोमैन जो वो भी एक नंबर के शोमैन थे, जो उन्होंने शो किया हीरोइनों को, खास तौर पे रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी,
2: नगमा
3: ने तो उनकी एक ही फिल्म करी. एक्चुअल शोमैन थे वो भी. उनका म्यूजिक फिल्मों का तो अल्टीमेट होता था, चाहे उनकी कोई सी भी फिल्म उठा के देख लो.
2: तो ये इतनी बड़ी हिट क्यों हुई थी यलगार?
3: अच्छी उस टाइम तो मैडम, वैसे भी सारी फिल्में ऑलमोस्ट मल्टी स्टार फिल्में सारी हिट हो जाती थी उस जमाने के.
2: एक्शन मूवी है ये.
3: एक्शन मूवी थी. संजय दत्त का रोल बड़ा अच्छा था, खैर इस फिल्म के अंदर.
2: विक्की अरोड़ा जो है वो उनके सगे बेटे नहीं है, बट वो उनके फॉस्टर सन है, एंड उन्होंने डेब्यू किया था यलगार में.
3: डेब्यू किया था किसी ने, मैंने कहा फिल्म से डेब्यू किया था.
2: हाँ, आधी इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती है रमन. फिलहाल मैं उस गाने की बात कर रही थी, नगमा, संजय दत्त. एक्चुअली दो गाने बहुत बड़े हिट है इस मूवी के.
3: एक वो याद है, आखिर तुम्हें आना,
2: दूसरा हो जाता है कैसे प्यार.
3: सॉरी, ऐसे हो जाता है कैसे प्यार.
2: बहुत बढ़िया. अब मैं घर जाके ये मूवी देखने वाली हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हिट थी, मुझे देखना है कि क्या था इसमें ऐसा.
3: डन, आप देखिए, फिर दोबारा बात करेंगे.
2: डन, हैव अ ग्रेट इवनिंग रमन. एंड अब इतने अच्छे गाने की बात कर दी है.
3: सुना दूं या मैं सुना दूं? आप सुनाओ.
2: आप सुनाओ, मैं यहाँ पे सुनाऊंगी. आप दो लाइनें गाओ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं.
3: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी.
2: बहुत बढ़िया,
3: नहीं काफी है.
2: अभी यहाँ पे हम ओरिजिनल गाना सुनते हैं. हैव अ ग्रेट वीकेंड रमन.
3: थैंक यू मासी, सेम टू यू.
4: जिंदगी से भाग कर आया हूँ,
5: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED 24/7. बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: beat of Bollywood. The Big Jail, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, खुश हुआ.
3: तो आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान. तो कितनों की जान है आप?
4: मॉम की जान.
3: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया. करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट. 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए.
4: एप्पल.
3: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो. 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं.
4: पालक पनीर.
3: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान. ये नहीं हो पाएगा आपसे.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव, लोफाई एंड नाइट फील्स. योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड. ओनली ऑन द बिग चिल. ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग चिल, वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे। Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।